तुम अदाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है। लुक ये मेरा आसम अदाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है। अरे शादी।

अरे ताजमहल बनवाना शाहजहां की भूल है, उसके पास पैसा अपने हाथ में तो फूल है। तूने गुस्से में फोन मेरा काटा तो आशिक सरेंडर हुआ।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: गराइन्छ। इच्छुक जनसमूह संघ संस्थाले धार्मिक यात्रा गर्न चाहेमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्कको लागि मोबाइल नम्बर 9841693152 र 9841628317। नोट, भाडा, खाना, चिया, पानी र लजिङ सहित 8-9 दिनसम्म नेपाली रूपियाँ 15,000 मात्र। मुन्ना गुप्ता चारधाम तीर्थयात्रा सर्भिस, विसर आर्ट, सेरा फिल्म हल चोक, क्लमजुङ। क्यों भविष्य में चिंता क्यों पारे मोइंदी
1: आखिर आगे गई इंश्योरेंस कियम
0: ओहो थदई मरी गा चील मुए
1: ये भयो समस्या खै विषय पैनिक आगे प्लान कम
0: लौ छैली मु बिसामी नै बिनी छ्याब बन्दिल परे।
1: रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स चिन्ता आङी समाधान
0: छ्याबा मि छ्याबा रोजाई।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.
3: तपाईं रेडियो मर्सेङ्गी एफएम

0: అన్నా మా ఫార్చూని అయ్యి
1: వాడరికి ఆర్చెస్
0: బేగొడుతున్నా.
2: अन्नपूर्ण चलचित्र मन्दिर बेसी शहरमा यही साउन एक गते शुक्रबारदेखि भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ. नेपाली कथानक चलचित्र गौथली.
3: तिमीले पढ्न आउँछ? माया गर्छु भन्नेलाई के भन्छ अंग्रेजीमा?
4: आई लव यू.
2: समय मध्याह्न 12 बजे, दिउँसो 3 बजे र साँझ 6 बजे.